रेडियो सुरसंगम 94.7 एफएम सुन रहे सारे श्रोतियों नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन सोमवार अक्तूबर महीने की 12 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 5 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। 5 बजे अमृत बराड़ जी प्रोग्राम पेश करनगे, 8 बजे एक विशेष प्रोग्राम आप जी लिए पेश किया जाएगा, तो 9 बजे पंजाब तो जितेंद्र पन्नू जी नाल प्रोग्राम साझा किया जाएगा। ये साढ़े अज के बाकी रेंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा वेरवा। सब तो पहला प्रोग्राम दे विच मौसम की गल करांगे, उस तो बाद खबरां दी मार्केट की, तो अज के प्रोग्राम दे विच बजाए इसते कि असी वक्री वक्री खबरां ते ध्यान केंद्रित करिए, अलबर्टा रेफरेंडम के जिहड़े 10 सवाल ने उन्हां 10 विचों प्रमुख तौर पर वड्डे 3 सवाल ने, जिहड़े वो 3 सवाल किहड़े ने, पहले 3 सवाल उन्हां ते विस्थार नाल चर्चा करांगे जी। ये साढ़े अज के इस प्रोग्राम की रूपरेखा होवेगी। गौर नाल सुनण वाली है, असी बड़ी कोशिश के नाल कुछ फैक्ट्स जिहड़े ने आप जी के सामने रखांगे, तो सवाल की ने एग्जैक्टली आम तौर पर जो चर्चा चल रही है उस विच इन्हां सवालों नूं कन्फ्यूजिंग भी कहा जा रहा है, लेकिन असी इस ते विस्थार नाल चर्चा करांगे तो देखांगे कि असल विच ये की है। सब तो पहला जिहड़ा मौसम की गल कर लईए, इस वेले 5 डिग्री सैलसीयस है। वीकेंड ते सीजन की पहली हल्की जी फुहार जी स्नो की पई है, लेकिन मौसम खुशगवार है, एक बार फिर सोहनी धुप निकली हुई है, तो कल नूं हल्की फुल्की बदलवाई हो सकती है, लेकिन ज़्यादा करके धुप निकली रहेगी। कल नूं दिन वेले 11 होवेगा, उस तो बाद बुधवार नूं बिल्कुल वधिया दिन 17 डिग्री सैलसीयस, उस तो अगले दिन वीरवार नूं 11, फिर वीकेंड गर्मा गर्म होगा, 18-19-20 तक टैंपरेचर एक बार जा सकता है। रात का टैंपरेचर भी प्लस में अजे रहने की संभावना है। सो अजे असी ये कह सकते हैं कि साडा जिहड़ा अक्तूबर महीना है ये ठीक ठाक इस तरह गुजर जाने की संभावना है। कोई लंबे समय के फोरकास्ट के विच भी कोई तापमान के विच कोई बहुत लंबी चौड़ी गिरावट सानू नज़र नहीं आती, पर भरोसा नहीं है मौसम कदों बदल जाए। सो तुसी जुड़े रहना रेडियो सुरसंगम दे नाल, असी तुहानू ये अपडेट देंदे रहांगे। अज के दिन के संबंध में थोड़ी जी गलबात करांगे। थैंक्सगिविंग डे है, तुसी घर बैठे भी होवोगे जां बाहर भी ड्राइव कर रहे होवोगे, साडी आवाज़ सुन रहे हो। इस दिन के संबंध में तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की कहिंदे ने, उन्होंने सैपरेशन का मुद्दा ही इत्थे छोया थैंक्सगिविंग डे के मौके पर, उहदे ते चर्चा करांगे। तो जिवें मैं पहलां दस्सिया कि सैपरेशन के मुद्दे ते विस्थार नाल असीं चर्चा करनी है, तो जे साडे कोल समां होया तां कुछ साडे कोल होर खबरां हैगियां ने उन्हां नूं भी छोण दा यतन किया जाएगा। तो प्रोग्राम विच सब तो पहला असीं जरा स्पोंसरां दे बारे आप जी नाल सांझ पा लईए। इस प्रोग्राम के स्पोंसर हैं जी सोनिक इंश्योरेंस के मानस पहुजा। मानस हरी दावा करते हैं कि अलबर्टा में ट्रकों की इंश्योरेंस के अगर सब तो बेस्ट रेट लेने ने तो संपर्क कर लो साढ़े नाल सोनिक इंश्योरेंस के मानस पहुजा होर। फोन नंबर है 587-832-1208 5878-32-1208 सोनिक इंश्योरेंस के मानस पहुजा। YYC होम केयर कहते हैं कि तुहाडे घर विच बजुर्ग हैं, जेकर उन्होंने सांभ संभाल की लोड़ है तो वीरपाल कौर नाल संपर्क करो। इन्हां दी कंपनी YYC होम केयर तुहाडे घर विच बजुर्ग

0: ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। 7 ਨਵੰਬਰ, 14 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲ ਕਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ 403-617-9045 ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਰਸੇਮ ਪਰਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 403-701-1308 ਤੇ।
1: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, RESP ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
2: नमस्कार, सलाम, यारी मदद, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में। आप सुन रहे रेडियो सरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमृत बरार। आप सबका अपने इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगेन कैलगरी के अंदर मौसम जो है चेंज होता हुआ, और जितना भी टाइम हमारे पास है अभी समर्स का, जितना भी सूरज आपको दिख रहा है और जितनी भी गर्मी आप ले सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, जरूर लें और बाहर निकलें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, मस्ती करें और एंजॉय करें इस वेदर को, क्योंकि जो सर्दी देवी हैं बहुत जल्दी हमारे शहर में दस्तक दे देंगी। अगर हम बात करते हैं सर्दियों की, डेफिनेटली कुछ ना कुछ यू नो वेदर चेंजेस तो आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंडिया के जो अमेजिंग फेस्टिवल्स हैं वो इसी सीजन में आते हैं। हम बात करें दुर्गा पूजा की, हम बात करें दशहरे की, दिवाली की, ये सब इसी टाइम पे आते हैं। और दिवाली के इस शुभ शुभ उपलक्ष्य पर हमारी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे लिए लेके आती हैं दिवाली की अमेजिंग पार्टीज। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियंस इन YYC, जो आपके लिए लेके आ रही है एक अमेजिंग दिवाली गाला नाइट, जो कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ अटेंड कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं दिवाली के इस अमेजिंग फेस्टिवल को। इस बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ आज उनकी टीम जुड़ी है, तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या उस प्रोग्राम में होने वाला है। मैं स्वागत करना चाहूंगा गौरव जी का, शशांक जी का और चारू जी का। आप सबका बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में।
3: थैंक यू
2: फॉर कमिंग ओवर हेयर एंड शेयरिंग योर यू नो इनसाइट अबाउट द प्रोग्राम। गौरव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप लोग अंत तक मेहनत कर रहे हैं ऐसे अमेजिंग प्रोग्राम्स को पब्लिक तक ले जाने के लिए, क्योंकि अगेन हम एक डिफरेंट मुल्क में बैठे हैं, दो हमने अपना इंडिया यहां बसा लिया है कह सकते हैं, क्योंकि अगेन हम लोग जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं या रीति रिवाज हैं उसको यहां पर हम मनाते हैं डेफिनेटली, लेकिन मिलकर मनाने का अपना मजा है, राइट। हम कहते थे ना कि भाई दिवाली की पार्टी में कौन कौन दोस्त आ रहे हैं घर के, तो वो एक अपना कौन कौन रिश्तेदार आ रहा है, तो वो अपने घर की पूजा खत्म करके और फिर घरों पे जाते थे दिवाली बनाने के लिए,
3: मिलके करने में मजा
2: ही अपना है, राइट। बिल्कुल, तो ये प्रोग्राम जो है आपके पोस्टर के हिसाब से 1 नवंबर 2026 को होने वाला है, तो गौरव जी आपसे शुरू करते हैं कि क्या एक कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा ईयर है जो आप ये बनाने जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को।
3: तो सर, हमारी सोसाइटी है इंडियंस इन वाइब्रेंट सोसाइटी, तो हम हर साल हमारे जो मेजर जो दो प्रोग्राम बहुत अच्छे करते हैं हम, दिवाली और होली, तो 2024 में हमने किया था एंड क्राउन बैंकेट हॉल में, फिर जेनेसिस में किया 2025 में, तो वी हैड अ वेरी गुड रिस्पांस, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने काफी एंजॉय किया, तो इस बार हम सब काफी बड़े वेन्यू पे कर रहे हैं रियो बैंकेट हॉल में। तो 1 नवंबर को हमारा इवेंट है और करीब हम शुरू करेंगे 4 बजे से
2: जी,
3: तो 4 से 5 हमने एक नेटवर्किंग सेशन रखा है।
2: अच्छा,
3: तो चार से पांच सारे लोग मिलेंगे जितने भी हैं हमारे स्पॉन्सर्स, बिजनेस लोग सारे,

0: जी सब कनेक्ट प्रोफेशनल्स हैं वो कनेक्ट करेंगे
1: जी,
0: और उसके बाद फिर सारे हमारे कल्चर परफॉर्मेंस वगैरह हैं। तो चारू जी बहुत अच्छा हमारा मैनेज करती है पूरा कल्चरल, इवन इंडी फेस्ट में भी इन्होंने काफी अच्छा मैनेज किया था
1: जी।
0: तो आई थिंक वो अच्छे से बताएंगी इसके बारे में, तो शी कैन एक्सप्लेन बेटर।
1: जी बिल्कुल चारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। तो आपके पास आते हैं, आप ये बताइए कि इस प्रोग्राम में क्या क्या प्रोग्राम्स, और जैसे कि गौरव जी ने कहा कि बैंड्स होंगे, और क्या क्या टाइम वाइज चीजें होने वाली हैं।
2: जैसे कि अभी गौरव जी ने, पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों का और सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत इंडियंस एंड इन्वाइवेसी की तरफ से वेलकम करती हूँ कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कल्चरल इवेंट में ना सिर्फ हम प्रोग्राम्स पेश कर रहे हैं, जैसा कि गौरव जी ने कहा कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हम आपस में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मुलाकात होना भी बहुत बड़ी बात हो गई है। बिजनेस तो है ही है, पर आपस में एक दूसरे से मुलाकात करना, जानना एक दूसरे को कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हम मदद कर सकते हैं, और ये एक अच्छी वजह है मुलाकात करने की। तो हम लोगों ने एक टाइम स्लॉट रखा है सभी लोगों के लिए, जिसमें कि आप 4 से 5 बजे के बीच में आइए। प्रोग्राम हमारा वैसे कल्चरल शुरू होगा अराउंड 6 बजे के आसपास, तो कोशिश यही रहेगी कि हम अपने सारे कल्चरल प्रोग्राम से पहले सबसे एक दूसरे से मुलाकात कर लें, हाय हेलो कर लें, जान लें एक दूसरे को, दिवाली की मुबारक दे दें, और उसके बाद हमारे कल्चरल इवेंट शुरू होते हैं 6 बजे से, जिसमें कि आपको जो जनरली होता है वो तो है ही है, नृत्य है, गीत है, संगीत है, मनोरंजन है, कुछ हद तक हम गेम्स कर रहे हैं ताकि एक एंगेजमेंट हो सबका आपस में एक दूसरे से। तो दिवाली का गेम्स भी हैं, तो आप जो चीज सोचकर आ रहे हैं वो चीज आपको जरूर मिलेगी। आप सिर्फ सज धज के आइए, दिवाली मनाइए और हमारे साथ मनाइए, वो ही हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो वेलकम।
0: बेसिकली हमारे 2 लाइव बैंड हैं
1: जी,
0: अरा रूट्स है, फिर लैटिट्यूड है
1: जी,
0: और डीजे वरुण जो हमारे डीजे हैं शुरू से साथ में करते हैं
1: जी,
0: और जैसे 4 डांस ग्रुप्स आ रहे हैं इस बार
1: जी,
0: गुरुकुल डांस अकेडमी है, फिर ग्लैमन ग्रुप है, नित्यांगना है, फिर वाई वाई से गिद्दा है मंदीप तुर जी का
1: जी,
0: और मतलब फुल ऑफ सिंगर डांसर परफॉर्मर्स। गुरु शरण जी हैं जो हमेशा महफिल बहुत अच्छी बनाते हैं हमारी, अर्जिता हैं, अनु हैं, और एक नया टैलेंट है दृश्या,
1: अच्छा
0: इज ऑल्सो परफॉर्मिंग। तो हर बार एक नया बच्चा भी हमारे लिए परफॉर्म करता है। एक बार मनीष मिश्रा जी के बेटे ने भी किया था
1: जी जी, प्रणव
0: बार ये प्रणव में किया था। हर बार हम किसी एक बच्चे को लॉन्च करते हैं,
1: क्या
0: लिसन टू हर एंड, तो आई थिंक सब पूरा सब कुछ काफी ज्यादा लाइन वाइज बैक टू बैक परफॉर्मेंस मिलेंगे वहाँ।
2: कुछ लोग तो हमारे साथ बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं,
1: तो
2: जैसे कुछ कोई हो गई, और ये गुरुशरण जी हैं, और अनु हैं, और अरिजिता जी हैं, ये तो हमारे साथ शुरुआत से हैं, तो उनका तो बनता है हमारे साथ होना। बाकी जो नए लोग हैं उनको भी एक मौका मिलता है, जिसमें कि बैंड परफॉर्मेंस है, उनकी भी एक नई शुरुआत हमारे साथ है एटलीस्ट, तो हम उनके साथ हमारे ऑडियंस को वो भी देखने को मिलने वाली है।
1: क्या बात है,
2: काफी कुछ चीजें हैं, आइए बिल्कुल आइए।
1: शजांग जी आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में। तो आप कैसे जुड़े हैं इंडियन हिप हॉप वाइसी के साथ?
3: मैं इंडियन हिप हॉप वाइसी के साथ ऑलमोस्ट 3 साल से हूँ।
1: अच्छा,
3: 3 ईयर
1: जी।
3: और हम बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम जो हैं वो हमने साथ में किए हैं
1: जी।
3: मैं मोस्टली प्रोजेक्ट और इवेंट मैनेजर एंड वॉलंटियर मैनेजमेंट का जो सारा जितना भी रोल है
1: जी
3: वो परफॉर्म करता हूँ
1: जी।
3: और इस साल हमने इंडी फेस्ट भी किया था 2026 का
1: जी जी जी।
3: सो इंडियन इन वाइवेसी इज द लीड ऑर्गेनाइजेशन हु लीड द होल इवेंट एंड वेंट वेरी वेल। लाइक इस साल का बहुत अच्छा फीडबैक आया, बहुत अच्छा लगा सबको, सारी चीजें कल्चरल चारू जी ने बहुत अच्छा उसमें पूरा मैनेज किया था
1: जी।
3: और विथ रिगार्ड्स टू इंडियन इन वाइवेसी, दिवाली हर बार की तरह ये भी बहुत अच्छी होने वाली है। सारी चीजें होती हैं जैसा सारा शेयर कर चुके हैं, हमेशा नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देना कि वो आए और वो अपना शोकेस करें। और रही जो दर्शक हैं उनके लिए भी इतना कुछ रहता है कि वो थ्रू आउट 4 बजे से लेकर 11 बजे तक उनको 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो इवेंट से कट हो रहे हैं या कोई चीजें डिस्कनेक्ट हो रही है। थ्रू आउट वी प्लान आवर थिंग कि जिसमें बहुत सारे एक्साइटमेंट, बहुत सारा एंगेजमेंट, गिफ्ट स्पॉन्सर की तरफ से, और बहुत सारी चीजें जो होती है बैक टू बैक वो उसमें रहती है, जिससे सारा जो क्राउड है वो

0: कनेक्ट रहता है, तो क्राउड को अगले 5 घंटे के लिए कनेक्ट रखना और वो दिवाली का अच्छा एक्सपीरियंस देना, यही हमारा मतलब पूरी हमारी कोशिश रहती है और इसमें ही हम मेहनत करते हैं। और काफी अच्छा फीडबैक आता है लोगों से, काफी लोग एंजॉय करते हैं, टिकट हमारे हमेशा सोल्ड आउट जाता है 100% और
1: ऑलमोस्ट
0: सोल्ड आउट, और अभी तो इवेंट में काफी 20 दिन के आसपास है और हम अभी से सोल्ड आउट हो चुके हैं। और वेन्यू इस बार बहुत प्यारा है, और रियो बैंक्वेट सब जानते हैं, वन ऑफ द फेमस इन द कैलगरी रीजन, एंड बहुत अच्छा मजा आने वाला है। म्यूजिक डीजे वरुण इन्हें इंडी फेस्ट में भी कराता और हमारे सारे इवेंट्स में करते रहते हैं, तो ये भी एक फेमस पर्सनैलिटी है जो हम आपको लास्ट में बना ओपन फ्लोर रखते हैं जिसमें डीजे अपना पूरा टैलेंट दिखाते हैं और पब्लिक अपना टैलेंट दिखाती है डांस करके, जैसे भी अपना एंजॉय करके। तो ये सारी चीजें जब ये सब क्लब हो जाती है तो ही एक यादगार लोगों के लिए बन जाता है अगले 1 साल के लिए, और यही हमारी कोशिश है।
2: क्या बात है, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया बीच में, आप इतना फ्लो में बोल रहे थे, सो मैं चाहता था कि लोग आराम से जो हमारे लिसनर्स हैं वो आपकी बात को सुने। यू एक्सप्लेन इट रियली वेल, और बहुत अच्छी बात है कि इतना ताना बाना जो है उसको आपने उसके बारे में सोचा। गौरव जी, मेन चीज होती है आपकी टीम, एंड यू आर रियली वेरी यू नो लकी टू हैव गुड पीपल इन योर टीम। और देखिए, कप्तान तो खेलता ही है लेकिन कप्तान के साथ साथ उसकी जो टीम है उसका योगदान बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली, सो यू आर यू नो आई कैन से यू आर लकी, यू आर वेरी यू नो lucky in a way to have such people around you, with you, who can help you to organize such a big event. क्योंकि बहुत एक different you know, जैसे कि शरंग जी ने कहा और चारू जी ने कहा कि लोगों को बांध के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर डिस्कनेक्ट हो जाता है ना वहां पर लोग सोचते हैं अगली बार जाएं ना जाएं, ये क्या कर लिया, चाहे वो बात पैसे की नहीं होती है, बात ये होती है कि यार मैंने उस मूवमेंट को एंजॉय किया, मैं अपनी फैमिली को लेके आया हूं वहां पर, मैंने उस चीज को अपनी फैमिली के साथ आया हूं तो उसको मैंने एंजॉय किया कि नहीं किया। कईयों को छुट्टियां नहीं होती, वो कहते हैं चलिए छुट्टी ले लेते हैं आपके साथ मस्ती करेंगे लोग।
1: मेहनत भी की चारू जी ने, इवन शशांक और बहुत सारी टीम हमारे, बहुत से लोग बैकएंड में भी काम कर रहे हैं, जुलरार हमारे हैं, दिव्यांशु
2: जी,
1: मयंक, लॉट ऑफ पीपल दे आर वर्किंग वेरी हार्ड
2: जी
1: फॉर द इवेंट। और सर जो टिकट जो है हमने बहुत रीजनेबल रखा है वो अफोर्डेबल हुआ है बिकॉज ऑफ हमारे स्पॉन्सर्स
2: जी।
1: तो जो हमारे मेन टाइटल स्पॉन्सर हैं सत्यम बंसल
2: जी,
1: ही इज वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल रियल्टर इन कैलगरी
2: जी,
1: एंड रेजिडेंशियल भी करते हैं वो
2: जी।
1: तो मुनाफा रियल्टी करके उनका है
2: जी,
1: उन्होंने सपोर्ट किया है हमें, और 2 प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर है हमारे जैसे कि आप भी जानते हैं वीरपाल जी, जो सबको सपोर्ट करती है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट, उन्होंने सब टाइटल स्पॉन्सर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर है हमारी, और सांझ गर्ग है
2: जी,
1: वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं सारी कम्युनिटीज को, और फिर आरबीसी बैंक का सीआईबीसी बैंक। तो हम लोगों ने मिलकर इस टिकट को इतना अफोर्डेबल बनाया है, रियो में हमने सिर्फ अराउंड 45 का टिकट अभी है इस टाइम,
2: अच्छा,
1: और टेबल इज मोर चीपर, अगर लोग 10 लोगों का टेबल लेते हैं इट्स ओनली फॉर $40 देन लाइक 400 में मिल रही है
2: जी जी। अच्छा ये बताएंगे कि देखिए ये सॉरी मैं बहुत चटोरा हूं तो मुझे खाने पीने का बड़ा शौक है, तो खाने पीने का क्या प्रोग्राम रहेगा?
1: खाने में आपको सब स्टार्टर अपना ये कढ़ाई पनीर दाल मखनी और जो आप सोच सकते हैं सारा
3: दिवाली में। कोई चीज सस्पेंस में भी रखनी चाहिए लोगों में, बढ़िया मेन्यू है।
2: गौरव जी ने सारे पत्ते खोल दिए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि भाई खाने पीने का मजेदार प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा।
0: आपको वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन कैलगरी
2: जी,
0: ये रियो बैंक्वेट हॉल से जो है
1: बहुत अच्छा सर्विस है उनकी,
0: बहुत अच्छा सर्विस है उनकी, बहुत अच्छा खाना है उनका, और मतलब थ्रू आउट पूरा इवेंट वो अपने स्नैक्स स्टार्टिंग फ्रॉम एपेटाइजर देन ड्रिंक्स और सारा खाना,
1: और इतने सारे
0: मेन कोर्स है,
1: गिफ्ट वगैरह भी शशांक ने बताया, जैसे 55 इंच टीवी हम दे रहे हैं,
2: अच्छा लकी ड्रॉ वगैरह निकलेगा
1: लास्ट टाइम,
2: क्या
1: बहुत सारे लॉट ऑफ गिफ्ट, मतलब इतने सारे गिफ्ट, करीब 20 तो गिफ्ट हमारे होते हैं तो लोग जीत के लेके जाते
2: हैं। बहुत बढ़िया,
1: बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी है, जैसे बेस्ट ड्रेस का है कॉम्पिटिशन,
2: मैं वही आने वाला था चारू जी, मैं आपसे पूछ रहा था कोई ड्रेस कोड है इसके लिए कि हम किसी भी वे से ट्रेडिशनल वे से तैयार होके आ सकते हैं?
3: मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ट्रेडिशनल बेस्ट ऑफ योर वेयरिंग करके आइए, ताकि आपको बेस्ट ड्रेस अवार्ड मिले, ताकि वो इसमें सिर्फ ना सिर्फ औरतों के लिए, बहुत जरूरी है आदमी सर दर्ज के आए क्योंकि उनके लिए भी अवार्ड है,
2: बड़ा कम कम मौके मिलते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ तैयार हो सकते हैं, लेडीज तो तैयार हो जाती है कोई छोटी मोटी पार्टी में भी, है ना,
3: जी, जी, जी।
1: लेकिन अब नहीं करेंगे, लोगों के लिए इतनी मेमोरीज रहती है।

0: लास्ट ईयर तरुण जैन को मिली थी डायमंड रिंग, उससे पहले राजेश चुगेक हमारे हैं इमिग्रेशन लॉयर, उनको मिली थी डायमंड रिंग. तो लोग डायमंड रिंग्स टीवीयां लेके जाते हैं यहाँ पे,
1: क्या
0: एंजॉय करते हैं. हमारे स्पॉन्सर बहुत सपोर्ट.
1: दिवाली है ना तो लक्ष्मी माता कहीं ना कहीं से तो आएंगी है. तो अगर
0: मैं बोल सकता हूँ इंटरनेट में वैसे कि इवेंट में सबसे ज्यादा अच्छे गिफ्ट होते हैं,
1: क्या
0: और लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे.
1: क्या बात है, क्या बात.
0: और ये हमारा पर्पज है.
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स खुशियां बांटना, साथ में खुशियां सेलिब्रेट करना, यही हमारा कल्चर है. चाहे हम जिस मर्जी अपनी जिंदगी में लेवल पे हों, लेकिन जितनी हम खुशियां बांट सकते हैं गौरव जी, और जितना हम लोगों को साथ लेके चल सकते हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट आवर कल्चर आवर रिलीजन टीचेस अस. एक दूसरे के साथ खड़े होना खुशियों में मुसीबत में.
0: लास्ट ईयर हमने किया था तो वी हैड फ्रांस के एम्बेसडर थे, यूके के एम्बेसडर आए थे, बाकी कम्युनिटी के लोग भी आते हैं, और साथ में आपकी गुरुद्वारा कमेटी पूरी आई थी, मंदिर की पूरी कमेटी आई थी, इस्कॉन की पूरी कमेटी आई थी. तो वी हैव ऑल मल्टी कल्चर, सारे लोगों ने मिलकर एंजॉय किया.
1: बिल्कुल सर, ये एक धर्म का त्योहार नहीं है, ये पूरे भारत का त्योहार है. और जहां पे भी हम जिस मर्जी प्रांत से हों, जिस मर्जी स्टेट से हों भारत की, हम इसको मनाते हैं और इसको इस पर्व को पूरे एज ए फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं.
0: हमारा स्लोगन भी सर है डायवर्सिटी यूनिटी.
1: एग्जैक्टली. अच्छा गौरव जी, अगर टिकट्स लेनी हो तो कहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं?
0: तो सर इसमें सीधे इवेंट ब्राइट पे जा सकते हैं हम लोग,
1: इवेंट ब्राइट पे. okay.
0: और या तो हमारा जो फेसबुक पेज है इंडियन सन बाबा सोसाइटी का, ग्रुप है, पेज है, दोनों पे लिंक दिया हुआ है. अदरवाइज मुझे कॉल कर सकते हैं, और ये पोस्टर पे सारी इन्फॉर्मेशन भी है
1: जी,
0: तो आप शेयर भी कर दीजिएगा
1: जी जी, जी
0: बाद में
1: जी जी.
0: और इवेंट ब्राइट पे टिकट अवेलेबल है हमारे,
1: इवेंट ब्राइट पे टिकट अवेलेबल है. सो दोस्तों, इंडियन वाईवाईसी आपके लिए लेके आ रहे हैं दिवाली गाला नाइट 2026, 1 नवंबर 2026 शाम को 4 बजे से लेकर 11 बजे तक रियो बैंक्वेट हॉल. अगर आपको टिकट्स चाहिए तो आप डेफिनेटली इवेंट ब्राइट पे जाएं और वहां पर टिकट्स के बारे में देख सकते हैं, या फोन कर सकते हैं 403-393-9011 403-389-8758. अगर आपको स्पॉन्सर्स करने हैं, स्पॉन्सरशिप करनी है इस प्रोग्राम के लिए, तो आप ईमेल कीजिए indians@bybyc@gmail.com, और जरूर इस अमेजिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने फैमिली के साथ आएं, फ्रेंड्स के साथ आएं, और इस दिवाली को 2026 को एंजॉय करें. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए प्रोग्राम में. बिफोर वी एंटर दिस प्रोग्राम, मैं 30 सेकंड सबको दूंगा. चारू जी शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगे लिसनर्स के लिए?
2: मैं आप सबका तहे दिल से इंतजार कर रही हूं कि आप आए हमारे इंडियन सिनेमाइवर्सी की दिवाली गाला में. 1 नवंबर को हो रही है, शाम 6 बजे से शुरू है, वैसे 4 से 11 बजे तक का टाइम है. आइए, आपका इंतजार रहेगा. बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारा मनोरंजन है, और आपसे ही पार्टी है. तो आइए, आप ही की वजह से हमारी पार्टी में रौनक लगेगी और ये दिवाली और सज पाएगी. तो आइए, आपसे मुलाकात करते हैं ऑन आर दिवाली गाला. I'll be waiting for you for sure.
1: क्या बात है शशांक जी?
3: जैसे कि सारे इंडियंस को पसंद है, वी डोंट लाइक चीप थिंग्स, एंड दिस इज द वन ऑफ द प्रीमियम दिवाली इन कैलगरी रीजन. लाइक प्रीमियम बैंक्वेट हॉल, प्रीमियम बैंड, प्रीमियम सिंगर्स, सब कुछ टॉप नॉच है. तो सब आए, एंजॉय करें और हमारे साथ में दिवाली मनाएं 2026.
1: क्या बात है गौरव सर.
0: सो थैंक यू, एंड सारे जो सुर संगम रेडियो के जो लिस्नर्स हैं उनको भी इनवाइट करना चाहते हैं, आप आए. और इस दिवाली का जो यूनिक मतलब कॉन्सेप्ट है हमारा, सारे लोग आए, हर कम्युनिटी से लोग आए, एंजॉय करें आके, मिस ना करें, जल्दी से टिकट बुक करें, और सबका इंतजार रहेगा, आके एंजॉय करें. इतने सारे हमारे परफॉर्मर लोग मेहनत कर रहे हैं, एंड सारे डांस ग्रुप्स हैं और लाइव बैंड है, और प्लीज ज्वाइन करें, मिस ना करें, जल्दी से टिकट ले लें क्योंकि टिकट क्लोज होने वाली है.
1: क्या बात है.
0: और अगर टेबल चाहिए डायरेक्ट मुझे कॉल कर लें, आई विल बुक अ टेबल.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल. सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर. एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं. जाइए कि नहीं, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद.
4: कैनेडा दे विच अपना घर लेना हर किसी का सपना होंदा है,
5: पर अक्सर मॉर्गेज दियां मुश्किल शर्तां, बैंक दियां उलझणां ते वध रहे इंटरेस्ट रेट इस सपने नूं साडे तों दूर कर दिंदे ने.
4: पर हुण तुहानूं फिकर करन दी लोड़ नहीं, मॉर्गेज ब्रोकर अमृता औलख तुहाडा सपना करनगे साकार.
5: चाहे तुसीं फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अपना मॉर्गेज रीफाइनेंस करवा रहे हो, जां इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लै रहे हो,
4: इह पंजाबी हिंदी अते उर्दू विच वी तुहानूं बिल्कुल सही ईमानदार अते फायदे दी सलाह देंगे.
5: अमृता औलख मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स, आज ही कॉल करो 587-500-0276.
4: तुहाडे घर दी गल अमृता औलख करेगी हल. सत श्री अकाल कैलगरी, की तुसी भी लब

0: कैलगरी च कार लैंड दी फीलिंग आई लई जायो। वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है। उन्हां दे आउण तो पहला मैनू कार चाहिदा है।
1: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल, जिन्ना दी सलाह नाल हुण कार इक नहीं दो लवांगे, पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई। मैं सुनिया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है।
0: जी हां, मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल इक वार जरूर गलबात करो। जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445, 403-616-2445।

0: ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰ ਸੰਗਮ
1: ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਮਿਲਿਆ
2: ਕੀ ਹੋਇਆ
1: ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਹੋਣਾ ਦੋ ਦਿਨ
2: ਓਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਵੜੈਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਸਕੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਾਨਸ ਅਹੂਜਾ 5871321208 ਜਾਂ ਰਮਨ ਵੜੈਚ 7807530001 ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
3: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में आप सुन रहे रेडियो सुर संगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बरार एक बार फिर से आपका अपने इस प्रोग्राम में खैर मद्दम करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे अगेन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज ड्राइव केयरफुली और ध्यान रखें अपना कैलगरी में मौसम चेंज हो रहा है तो अगेन ड्राइविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ के लिए आपकी गाड़ियां उनका ध्यान रखें क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली हैं तो गाड़ियां आपकी सही हैं बैटरी फिट है ब्रेकें सही हैं तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपको देखने के लिए जब सर्दी का मौसम दस्तक दे रहा होता है अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात करी इंडियन NYYC की टीम के साथ जो कि आपके लिए एक अमेजिंग फेस्टिवल लेके आ रहे हैं ऐसे ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी जो आपके लिए लेके आ रही है दिवाली सेलिब्रेशन का एक और प्रोग्राम हम लोग बहुत लकी हैं दोस्तों कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं हमारी माशरे में जो कि हमारे सबके लिए ऐसे अमेजिंग प्रोग्राम्स लेके आते हैं हम लोग सिर्फ देखते हैं कि यार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और लोगों ने इसमें टिकट दी उन्होंने जी पैसे तो मिलते ही हैं बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन ये जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं हमारे लिए ये एक बहुत मेहनत का काम है ये वॉलंटियर होते हैं उस सोसाइटी के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लोग अपना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं वो टाइम जो अपनी फैमिली के साथ या अपने लिए वो लोग यूज कर सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए यूज करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम होती है एक बहुत मेहनत का काम होता है जो कि ये प्रोग्राम्स को क्रिएट करती है क्योंकि प्रोग्राम को सिर्फ अगर हमने पोस्टर छापना हो तो बहुत इजी है कि आपने पोस्टर पे डाल दिया कि इस दिन प्रोग्राम है आप आ जाइए लेकिन जो लोग वहां पर आते हैं चाहे वो 5 रुपए दे के आए चाहे 50 रुपए दे के आए लेकिन उनको लगता है कि उसका वर्थ हमें मिला कि नहीं मिला हमें उसके अंदर एंजॉयमेंट मिली कि नहीं मिली हमें वो जो 5 रुपए मैंने खर्चे उसका पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज देने के लिए ये जो टीम है वो हमेशा एक अंतक मेहनत करती है उनको क्या मिलता है लोग ये सवाल करते हैं कि उनको क्या मिला उनको ये मिला कि आपकी खुशी आपकी मुस्कुराहट आपके साथ जो मेमोरीज जाएंगी वो उनके लिए जीत है और अगले बार आप दोबारा उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे यही उनके लिए सबसे बड़ी प्राइज या ट्रॉफी है तो ऐसी जो हमारी सोसाइटी हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी वो आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आ रही है और उस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए हमारे साथ उनकी टीम जुड़ी है तो आइए स्वागत करते हैं उस टीम का संजीव नागपाल जी विशाल जी मंजू जी और गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में
4: थैंक यू
3: संजीव जी शुरू करते हैं संजीव जी बहुत साल हो गए

0: कैलगरी में आपको और आपकी जो मेहनत है पूरी सोसाइटी के लिए वो देखने को मिलती है. दिवाली अगेन एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्योहार है, डजंट मैटर हम इंडिया के किसी भी कोने से हों, किसी भी प्रांत से हों, किसी भी स्टेट से हों, कोई भी भाषा बोलते हों, लेकिन ये जो दिवाली का पर्व है ये मनाया जाता है मिलजुल कर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. होली कहते हैं कि भई आप दुश्मन को भी गले लगा लो, लेकिन ये एक ऐसा त्योहार है जहां पे हम लोग कहते हैं कि जो अच्छाई की जीत है बुराई के ऊपर. कहते हैं राम जी से बड़े पंडित थे रावण, लेकिन आज राम जी की पूजा होती है, रावण को नहीं माना जाता. लेकिन अगर हम अपने वेदों में जाएं और अपने संस्कारों को देखें तो रावण भी एक बड़े महापंडित थे और उनके पास जो ज्ञान था, उनके पास जो सिद्धियां थी, उनके पास जो पावर थी, उससे तीनों लोग कांपते थे. लेकिन राम जी ने एक जो जिसे कहा जाता था ना कि भाई जो स्टोरी है कि उनसे पूछा गया रावण से कि आपको किससे डर लगता है और आप किससे मरना चाहेंगे, तो उनके वर्ड्स थे कि कोई तुच्छ मनुष्य मुझे क्या मारेगा. तो राम जी ने एक तुच्छ मनुष्य होते हुए भी उसका वध किया और उसको हम लोग उस पर्व को मनाते हैं. अगर हम सिखिज्म की बात करें तो उस दिन बहुत सारे राजाओं को मुगलों के राज से छुड़ाया गया, तो बहुत सारी खुशियां हैं जो इकट्ठी हम मनाते हैं. ये आप प्रोग्राम जो लेके आ रहे हैं हरियाणवी सोसाइटी की तरफ से, ये आपका कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा ईयर है आपके इस साल?
1: पहले तो सबको राम राम.
0: राम राम जी, बिल्कुल.
1: की तरफ से राम
0: राम. राम राम जी, बिल्कुल जी.
1: तो सिर संगम के जितने भी लिसनर हैं उनके सबका धन्यवाद करता हूँ और आपका भी. आपने हम इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ टाइम दिया आने के लिए. अभी आपने इतने कितनी अच्छी तरीके से बताया कि जो ये छूने वाली बात थी, राम जी और रावण में क्या फर्क था. वाकई ही आज का जो इंसान है ना, वो कहीं ही आज का जो इंसान है ना, वो कहीं ही आज का जो इंसान है ना, वो कहीं ना रावण बन चुका है. उसके अंदर अहंकार इस तरह का आ गया है कि किसी तरह से मैं जो चीज हो सकती है पार लूं किसी तरह से. एक आपने जो बात की ना, वाकई ही इंसान आजकल अहंकार में डूबा जा रहा है
0: जी.
1: तो वो राम कोई बन नहीं पा रहा.
0: कोशिश ही हो रही है कि हम राम बन जाएं, लेकिन बन हम रावण रहे.
1: That's right. कोशिश बहुत होती है
0: जी.
1: तो अभी कई बंदे बोलते हैं कि ओके कैसे, तो कोशिश हमेशा की जा सकती है
0: जी.
1: तो वही है जो ये जो इवेंट है दिवाली का, ये हम पहले लास्ट ईयर हमने न्यू ईयर का इवेंट किया हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी तरफ से
0: जी.
1: और हमारे साथ जो प्रोटेक्स ब्लॉक वाले हैं, तो हमने मिलकर ये प्लान किया कि क्यों नहीं हम इसको जो है दिवाली का भी प्लान किया जाए
0: जी.
1: और हरियाणा में नवम्बर 1st को हरियाणा डे मनाया जाता है
0: जी.
1: तो हरियाणा डे के सेम डे बहुत कुछ ऐसी जगह ही नहीं मिल रही थी या कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे थे, और भी प्रोग्राम्स हो रहे थे
0: जी.
1: तो इसलिए हमें 24th को, ये अक्टूबर 24th को प्लान रखना पड़ा
0: जी.
1: तो हम दिवाली एंड हरियाणा डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उस दिन.
0: अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
1: तो हरियाणा कल्चर को भी हम प्रेजेंट करना चाहते हैं उस दिन. तो जो हमारे हरियाणवी भाई हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं या हमें देख पा रहे हैं, तो उनसे यही है कि आए अपना कल्चर को जो है ना उस दिन को सेलिब्रेट करें और एक अच्छा मैसेज जाए कि कनाडा में जो है अपने हरियाणा को यहाँ रह के मिस नहीं करें और अपने इकट्ठे होकर वो हरियाणा डे और दिवाली मनाएं.
0: क्या बात है, क्या बात है. मैं अब बात करूंगा विशाल जी से. विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार प्रोग्राम से आपका. और इस सोसाइटी के साथ कब से जुड़े हैं आप?
2: मैं लास्ट ईयर अटेंड किया था इवेंट पहला.
0: अच्छा.
2: एंड इट वॉज वेरी इंजॉयबल.
0: अच्छा.
2: बट जो लोग हैं सोसाइटी में उनसे तो काफी टाइम हो गया उनके साथ जुड़े हुए.
0: जी, ऑफ कोर्स. तो क्या प्रोग्राम के बारे में कुछ क्या बताना चाहेंगे अपनी तरफ से आप?
2: हमारा प्रोग्राम 24th अक्टूबर को है, जैसे संजीव जी ने बताया
0: जी.
2: क्राउन बैंक्वेट हॉल में है
0: जी.
2: एंड 6 बजे के आसपास हम लोग स्टार्ट कर देंगे. एंड बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी रूट्स को ऑनर करें
0: जी.
2: हरियाणा डे एंड दिवाली दोनों मनाई जा रही है
0: जी.
2: दिवाली की जो लाइट्स की सेलिब्रेशन है उसको हम लोग उसको भी दिखाएं
0: जी,
2: दर्शाएं थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज एंड सेलिब्रेटिंग बोथ हरियाणा एंड दिवाली
0: जी.
2: बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा. बहुत बढ़िया काम कर रही है टीम
0: जी,
2: जो सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए
0: जी.
2: तो आई वुड ऑनेस्टली रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज जॉइन अस
0: जी. बिल्कुल बिल्कुल. मंजू जी, आपका फिर से स्वागत प्रोग्राम में. क्या बताना चाहेंगी अपनी तरफ से हमारे लिसनर्स को?
3: मैं बताना चाहूंगी कल्चरल इवेंट्स के बारे में. तो हम लोग काफी

0: काफी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए
1: जी.
0: हमारी कुछ गर्ल्स हैं जो कि एथनिक लाइक कल्चरल डांस परफॉर्म करेंगी अबाउट हरियाणवी. किड्स हैं जो बॉलीवुड पंजाबी एंड हरियाणवी मिक्स डांस कर रहे हैं. किड्स बहुत एक्साइटेड है, बच्चे हमारे
1: जी.
0: वो अपना कल्चर दिखाना चाहते हैं वहाँ पे, तो यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग आए वहाँ पे एंड एंजॉय करें फैमिली के साथ. ये पारिवारिक फंक्शन है तो रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे अपने बड़ों सबको लेके वहाँ पे आए.
1: क्या बात है गौरव जी, एक बार फिर से स्वागत प्रोग्राम में. तो अपनी तरफ से आप क्या बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में?
2: प्रोग्राम के बारे में तो सबने बताया ही है
1: जी.
2: बट एक बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं
1: जी.
2: उनके बिना कोई भी यू नो लाइक फाइनेंशियल इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट
1: ऑफ कोर्स.
2: तो अभी जैसे हमारे मेन स्पॉन्सर हैं प्रोटेक्स ब्लॉक प्रदीप जी
1: जी
2: एंड देन मेनलैंड मोटर्स
1: जी.
2: ये भी अपने हरियाणा से है करण
1: जी.
2: तो इनके बिना इट्स नॉट पॉसिबल राइट, लाइक दे आर वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन
1: जी.
2: तो मैं वही कहूंगा कि हमारे पास इस इवेंट में अच्छा खाना होगा, डांस परफॉर्मेंसेज होंगी
1: जी,
2: मेल मिलाव होगा, हमारी कल्चर को आप देख सकते हैं. बट उसके साथ और भी अगर कोई बिजनेस हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारा ये है कि जो कम्युनिटी का उनको भी एक बेनिफिट मिलता है. तो और कोई अगर स्पॉन्सर आना चाहे हमारे साथ जुड़ना चाहे, दे आर मोर देन वेलकम
1: जी. बिल्कुल बिल्कुल. संजीव जी, अगर हम बात करें हरियाणा डे की, जैसे कि आपने बताया उस दिन ये होने वाला है, तो हरियाणा डे क्या सिग्निफिकेंस क्या है, किस लिए मनाया जाता है, थोड़ा सा अगर आप हमारे लिसनर्स को बताएं.
3: देखो जो गौरव भाई थे ना, तभी उन्होंने एकदम से अपना वो दिखाया.
1: अच्छा.
3: आई लेफ्ट कंट्री 1995.
1: अच्छा.
3: स्टिल जैसे हरियाणा और पंजाब एक दोनों में, पहले तो हरियाणा पंजाब
1: इकट्ठा हो करता था जी.
3: तो जो डिवाइड हुआ, जैसे हमारा देश आजाद हुआ, तो हरियाणा उस टाइम पे एक किस्म से अपनी स्टेट बनी
1: जी जी.
3: तो उसको हरियाणा डे के नाम पे हमने फिर उसको करते हैं.
1: ओके ओके ओके. तो ये जो हरियाणा डे, ये अभी भी इंडिया में तो मनाते ही होंगे
3: जी. या लाइक एवरी ईयर जो है वहाँ पे हरियाणा डे को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है
1: जी.
3: तो वही कुछ हम यहाँ करना चाहते हैं, जो बंदे हरियाणा से आए हुए हैं तो मिस ना करें वो चीजें जो वहाँ देखते थे
1: जी.
3: तो हम इस तरह का कुछ करें. प्रीवियस अगर आपको याद हो, हमें जुलाई 5th को इवेंट किया था रेडस्टोन के अंदर
1: जी जी.
3: That was about 6,000 people.
1: जी जी जी जी.
3: तो वो तभी आए थे कि हमने उसको वेल ऑर्गेनाइज किया था
1: जी.
3: वेल थीम थी उसके अंदर, साथ में वॉलंटियर्स थे
1: जी.
3: तो इसमें भी सेम थिंग, जो हमारी वॉलंटियर की टीम है
1: जी,
3: और उसमें पूरा अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो इस चीज को हम बेटर कैसे करें
1: जी
3: राइट. और जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं उनके साथ यू नो कैसे कनेक्ट रहें, या एक दूसरे से मिलना मिलाना कैसे हो. और जो गिफ्ट की बात होती है, जो ऑलवेज होता है, जो दिवाली है तो कुछ गिफ्ट, तो कुछ हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो गिफ्ट गिव अवे कर रहे हैं. हम अभी अनाउंस नहीं करेंगे, बट आने वाले टाइम में और जैसे जैसे क्लियर होगा तो दैट विल बी देयर. कुछ ज्वेलरीज हैं, ज्वेलरीज भी यू नो ऑफर करने की जा रही है. सो ये अगेन जैसे गौरव भाई ने कहा कि बिना स्पॉन्सर्स के नहीं होता,
1: क्योंकि
3: मैं सब स्पॉन्सर का नाम लूंगा बहुत लंबी लिस्ट है
1: जी जी.
3: बिना स्पॉन्सर के हम कुछ नहीं कर सकते.
1: नहीं नहीं ऑफकोर्स, बिल्कुल आपने सही कहा. टीम एफर्ट है संजीव जी, और जब तक ये टीम इकट्ठे होके एक मत पे काम नहीं करेगी, जब तक हम लोग अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते. और अगेन ये रिजल्ट दोस्तों, मैं कोई एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रिजल्ट ये है कि आपकी खुशी, आपकी स्माइल, आपकी जो एक सेटिस्फेक्शन है कि हमने हमने ये अटेंड किया प्रोग्राम और इट वॉज वर्थ एंड वी रियली एंजॉयड इट. क्योंकि अगेन ये जो भी हमारे सेलिब्रेशंस हैं, हमारे त्योहारों के, इसको हम लोग अपनी फैमिली के साथ तो मनाते ही हैं, लेकिन अपने जो और यार दोस्त हैं, अपने जो माशरे के लोग हैं, उनके साथ मनाने का मजा ही कुछ और है. क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं होता कि आप वहां पर खाना खाने गए, यू मीट सो मेनी पीपल, मे बी यू डोंट इवन नो राइट. कई लोग यहाँ पर नए आए होते हैं, उनको उनके साथ मिलने का मौका मिलता है. वो लोग क्या कर रहे हैं, कि उनको कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, हम लोग ही हैं एक दूसरे का सारा यहाँ पर. अगेन जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, एकता हमारे में रहेगी, तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और ये जो हमारे इस तरह के त्योहार हैं और हमारे ऐसे इवेंट्स हैं, ये हमारे रूट्स को और स्ट्रांग करते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बहुत स्ट्रांग करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जी जी जी, आप कुछ कहना चाहते
3: हैं? इसमें जैसे अभी आपने बोला ना, तो हरियाणा का एक स्लोगन है, जय जवान जय किसान
1: जी.
3: सो तभी उसमें जो हरियाणा का नाम लाइक यू नो वहां का कल्चर वो दर्शाता है उसके अंदर. जवान हमेशा बॉर्डर पर रहता है.

0: बताएंगे कि खाने का भी बहुत कुछ होने वाला
1: है। मैं पूछने ही वाला था अगर हम खाने की बात ना करें तो भाई हमारा कोई प्रोग्राम होता नहीं है।
0: खाने वाले को कोई नहीं आता, बट जब मिलना मिलाना होता है, आपके कनेक्शन जुड़ते हैं, आपके बिजनेस आगे बढ़ते हैं, तो ये एक रिलेशन उसमें डेवलप होते हैं।
1: बिल्कुल। सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं हरियाणा डे एंड दिवाली सेलिब्रेशन की, जो कि हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी आपके लिए लेके आ रही है। तो ये प्रोग्राम जो है 24 अक्टूबर को क्राउन बैंक्वेट हॉल में होगा, शाम को 6 बजे ऑनवर्ड्स। संजीव जी, ये टिकटेड प्रोग्राम है?
0: जी बिल्कुल। इसके अंदर देखो, अगेन आप स्पॉन्सर हैं तो हम हैं,
1: right? जी बिल्कुल।
0: तो स्पॉन्सर ने बहुत हेल्प की है इसमें। हमारा जो एक्सपेंस है, हमने बहुत लिमिटेड बजट इंक्लूड फूड और एवरीथिंग, वी केम विद द $60
1: जी,
0: और $40 फॉर किड्स के लिए।
1: ओके ओके।
0: अंडर सिक्स यस
1: जी,
0: तो वो फ्री है।
1: ओके ओके। सो दोस्तों, टिकट जो है वो $60 की है, और 6 to 12 ईयर्स की जो बच्चे हैं उनकी फीस $40 है, और जो लाइक न्यू बॉर्न है 6 साल तक, वो बच्चों की फीस फ्री है, तो वो वहां पर आ सकते हैं। सर खाने में कुछ बताइए, कुछ क्या क्या होने वाला है, कुछ मिर्च मसाला दिवाली के टाइम पे क्या क्या मिलेगा खाने को?
2: खाने में सब कुछ है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्नैक्स, वेज नॉन वेज पूरा मेन्यू रखा हुआ।
1: अच्छा।
2: है फुल कोर्स मेन्यू है
1: जी।
2: उसके बाद फूड आइटम्स भी प्रॉपर है, बच्चों के लिए फ्राइज है, सो देर विल बी सम स्वीट वेलकम ड्रिंक है, यस दैट्स स्पेशल फॉर दैट डे, वी नॉट गोना रिवील कि वेलकम ड्रिंक क्या है।
0: सो जैसे मंजू जी ने बताया आपको कि हम लाइक हरियाणा कल्चर में क्या होता है, ड्रिंक नहीं पीते
1: जी,
0: जो बात है सच्चाई है
1: जी,
0: और मोस्टली वेज ही खाना ही चलता है
1: जी, जी।
0: तो यहाँ कल्चर के साथ हम जो दूसरे हैं, तो हम वेज और नॉन वेज भी रख रहे हैं, और सेम टाइम पे पेड ड्रिंक भी रख रहे हैं।
1: वो बार अलग होगा।
0: हाँ, जी, वो बार अलग होगा, जिसमें आप अगर आ रहे हैं तो ये नहीं है कि भाई कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ
1: बट ड्रिंक रिस्पॉन्सिबिली सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अतिथि देवो भवा ये हमारा स्लोगन है हमारे भारत देश का। तो जहां पे भी आप कहीं भी जाएं, जहां पर हिंदुस्तानी बसते हैं, आपको इसी तरह वेलकम किया जाएगा, इसी तरह प्यार मोहब्बत से आपको बिठाकर खाना खिलाया जाएगा। ये हमारा कल्चर है, यही हमारी सभ्यता है दोस्तों। तो आइए मिलकर हम लोग इस साल की दिवाली मनाएं और हरियाणा डे मनाएं। 24 अक्टूबर क्राउन बैंक्वेट हॉल में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। अगर आपको टिकट्स की टिकट चाहिए, संजीव जी कहां से ले सकते हैं, कोई फोन नंबर ईमेल बताएं प्लीज।
0: जरूर, टिकट मेरे को कॉल कर सकते हैं 403-608-5051, और अंकुश मलिक हैं 587-4369969
1: जी,
0: राइट। सो आप हमारी हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी .com पे भी जाके देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी है हरियाणवी सोसाइटी ऑफ इवेंट बाय, और हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी के फेसबुक पे भी जा सकते हैं। एक्चुअली टिकट के जो रिस्पॉन्सिबल
1: करता धरता हमारे ये साहब है जी जी जी,
0: तो ये टिकट के लिए थोड़ा और ये क्लियर कर देते हैं। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो ये कल्चर प्रोग्राम है उसके अंदर अगर हर कल्चर के बंदे आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं
1: जी,
0: सो ये नहीं है कि हरियाणा राज्य से हो रहा है तो आप नहीं, हम हरियाणा वाले ही होंगे, ऐसा नहीं है। सभी कल्चर, हम पंजाबी डांस वगैरह ये सब हो रहा है उसके अंदर, भंगड़ा गिद्दा ये सब चल रहा है। और सेम टाइम पे अगर उस दिन आप अपनी कोई ड्रेस ऐसा कुछ डाल के आना चाहते हैं तो लुकिंग नाइस, सो उसके लिए गिफ्ट भी हम तो वो भी रख रहे हैं, और हम खुद भी एक हरियाणा के उसमें पूरा रंग में
1: रंग करे आएंगे। हाँ, बिल्कुल, मतलब कि जो बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन होगा उसके लिए भी इनाम है वहां पर।
0: right.
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मंजू जी से पूछना चाहूंगा, मंजू जी कोई ड्रेस कोड है कि कोई भी किसी भी ट्रेडिशनल वे से हम लोग तैयार होके आ सकते हैं?
2: सो ड्रेस कोड कोई नहीं रखा है, बट ट्रेडिशनल अटायर वेलकम
1: है,
2: सो एवरीवन कैन वियर व्हाटएवर दे वांट, बट हम चाहते हैं कि सब ट्रेडिशनल पहने।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, सर्दियां तो आ रही हैं, लेकिन सर्दियों के साथ साथ हमारे जो त्योहार हैं वो भी आ रहे हैं। आपको इस समय हमारे नवरात्रि चल रही है, तो आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रि की, और जल्द ही दशहरा आ जाएगा, और फिर हम लोग दिवाली की वेट करेंगे, और दिवाली के लिए ये अमेजिंग प्रोग्राम आपके लिए हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी लेके आ रही है। 24 अक्टूबर क्राउन बैंक्वेट हॉल, शाम को 6 बजे ऑनवर्ड्स। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर फोन करें 403-608-5051 पर, या 587 436-9969. सर आपका बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू, आप आए हमारे प्रोग्राम में और इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर की. बिफोर वी एंड टुडेज प्रोग्राम, 30 सेकेंड विल

0: विद गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से लिसनर्स के लिए?
1: कुछ ज्यादा नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू वेलकम एवरी वन. इट्स अ चांस फॉर द कम्युनिटी टू गेट टूगेदर. वी आर सेलिब्रेटिंग बोथ हरियाणा डे एज वेल एज दिवाली, एंड इट्स अ बिग चांस. लाइक यू सेड अर्लियर, कम्युनिटी इज वॉट हेल्प्स ईच अदर. सो आई वुड वॉन्ट टू वेलकम एवरी वन फ्रॉम द कम्युनिटी टू कम एंड अटेंड द इवेंट.
0: क्या बात है, प्लीज बोलिए.
2: तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप अपने परिवार, अपने दोस्तों को लेके आइए, हमारे साथ दिवाली मनाइए, हरियाणा डे मनाइए, एंड यू ऑल आर वेलकम.
0: क्या बात है सजीव सर.
3: सर आप सभी ने वो की है, हमारी तरफ से यही है कि जो जिस भी कल्चर से हैं, जो राजस्थान से हैं या पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, कोई यूपी से हैं, सो दे मोस्ट वेलकम. ओनली इज नॉट कि हम हरियाणा हो गए, अगर आएंगे तो देखेंगे हमारे हमारे कल्चर में किस तरह वो हो रहा है. तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमें ज्वाइन करें. अगर किसी ने टिकट नहीं ली तो प्लीज वो टिकट ले और उस दिन को एक अच्छे तरह से हम सेलिब्रेट कर सके.
0: क्या बात है.
4: मैं एक्चुअली सबको बस यही वेलकम करूंगा कि यू शुड कम एंड ज्वाइन अस, और इट्स गोना बी अ फैमिली फ्रेंडली इवेंट. हमारा पूरा सोसाइटी का मेन कॉन्सेप्ट है, और हमारा एम ही है कि हम हमारे बच्चों को हमारी कल्चर दिखा सकें, और जहां पे हमारे फैमिली बच्चे सेफ फील करें. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी फैमिली फ्रेंडली इवेंट. तो आप आए, पेरेंट्स को लेके आए, बच्चों को लेके आए, एंड लेट देम एंजॉय.
0: क्या बात. सो दोस्तों अभी आपने सारी इन्फॉर्मेशन सुनी, तो प्लीज आप जरूर कांटेक्ट करें संजीव जी से और जरूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने. आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर. आपसे विदा लेने का टाइम हो गया. आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार और नए गेस्ट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ. जब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें. आप सबको एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट मंडे. तब तक के लिए टेक केयर.
5: की तुहाडे परिवार विच किसे नूं होम केयर दी जरूरत है? अपने ही घर अंदर अपनी बोली विच होम केयर प्राप्त करन लई YYC होम केयर वालियां दा अगला संदेश सुनो.
6: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम वीरपाल कौर टाटा. मैं फाउंडर हां YYC होम केयर सर्विसेज दी, एंड मैं पैरामेडिका बाय प्रोफेशन. एट YYC होम केयर सर्विसेज असी घरां दे विच होम केयर प्रोवाइड करदे हां, जिदे विच असी सरकार नूं सिद्धा बिल करदे हां अंडर क्लाइंट डायरेक्टर होम केयर इनवाइसी प्रोग्राम. इहदे लई गवर्नमेंट फंडिंग हैगी आ. उहदे लई तुहानूं कोई भी क्वेश्चन होण, तुसीं सानूं फोन कर सकदे हो 8257600983 ते. थैंक यू.
7: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया. कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े. मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल. पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो. गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स. मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम. सब दा माण, सब दी चाहत. अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757. मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स.
8: द टाइम इज 6 PM. 4.7, अ मल्टीकल्चरल रेडियो स्टेशन इन कैलगरी.